फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह, संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0352 62 66 11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

भजन महेंद्र कपूर जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको अब की बार ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। शीतल चौहान की आवाज में ये सुंदर सा भजन अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

चौहान की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर भजन अब की बार आप सुनते ही रहना।

गर्भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार बेला जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेस में इसकी जरिए ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन अभी आपने सुना। अगला भजन जो आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसकी जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए आप सभी जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

जिनकी आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में रोहन कपूर जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे आरती भजन की ओर।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो एस बी एस का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

कृष्णा मूर्ति और अभिजीत की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

शायर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी देखे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में फिल्म खुशी ये

0: पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

The Heart of the Millions, the Mighty Mukesh की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपकी फरमाई से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में हर एक काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0352-65-65-60 और ये तार की नंबर जो है टेलीफोन नंबर कंतूर का दफ्तर का जो है 24 पर दख बराबर होता है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए। अब वैसे हमेशा भी आप ईमेल कर सकते हैं रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए, और इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मुकेश एन लता, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम परस मनी।

मुकीस और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जले मोहम्मद रफी की आवाज में अबकी बार ये गाना मेरे गाड़ी उड़न घटोला। गाना का बोल है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पूरन खटोला मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। किशोर एनाशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। आशा भोसले एन किशोर कुमार

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए किशोर और आशा जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्म दुलारी से पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और साथियों के आवास में ये गाना पेश की गई। पुरानी फिल्म दुलारी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की इस पुरानी नगमे की खास प्रोग्राम में। किशोर एनाश, हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम दुनिया।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई है द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में।

दम आई टी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गए रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना धीरे धीरे बोल

दिलीप कुमार और खास तौर पर विजयंती बाला का खास फिल्म फिल्म राम और श्याम, उसी फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। ये खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए है। मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में अब की बार होगा और आपको हम ले चलते हैं ये गाना की ओर।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बजपी। इसके गए फिल्म का नाम मधु मथी। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चले फिल्म मैं चुप रहूंगी उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। एलफ और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चले फिल्म मैं चुप रहूंगी उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नाम था मैं चुप रहूंगी। चलिए आज के ये प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है मजबूर।
1: मैं

दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल।

मजबूर फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। चले मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है बड़ी।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनोखी अदा फिल्म का नाम होगा आपकी बार। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं और आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और वो भी खास तौर पर शमशाद बेगम और तलत महमूद जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और अब की बार फिल्म बाबुल का गीत पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज़ में आपकी बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

और रेडियो एसबीएस के जरिए ये अनबस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मन्ना डे और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

डाउट द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म मिलन की ओर हम आपको ले चलते हैं, खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बीच की गए मुखी सौर लता मंगेशकर की आवाज में, मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, आपकी फरमाइश हुआ। इस तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाग बार एक बार होता है 0325656560। इसी तारीखी नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म का नाम है अदालत।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम अदालत, उसी फिल्म से अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त, मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

गानाबस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में। गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शान और सुनिधि चौहान होगा प्रोग्राम में।

आपने सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में,

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

अनु जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम भी है।

और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनालका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

में फिल्म का नाम शादी से पहले फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई तेरे बिना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। कुमार सानू एन सुनिधि चौहान प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

निधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बसपुर गांबे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना आसरा उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

पेश की गए जबेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्या फिल्म का नाम अबकी बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा।

सौरिया गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। एक गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका।

पोर्टवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-25-65-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू और

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए अजरों बीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। चले अब की बार फिल्म लावारिस की ओर। एक फिल्म जो 1998

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। फिल्म का नाम पहले

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश की आवाज में आपकी बार ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना।

इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। फिल्म का नाम आसपास, मोहम्मद रफी एंड लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में। मन मौजी फिल्म का नाम।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ पुरानी नख़्मे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी

आशा भोसले की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

भारत मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और मुकेश और लता जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल, दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्ट करना तो टाइम सिर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मानो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Alka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इस सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम एर द फिल्म जवाने जाने मन एंड एर द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं।

0: शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है पिया द रीमिक्स।
1: परदेसिया ये सच है पिया।
2: Yo, listen out there!

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है।

सुनो लो यहाँ से हम आपको बताते हैं प्रोग्राम कैसा होगा। छह से आठ बजे तक आप सुनेंगे ओल्ड इज गोल्ड पुराने नखमे, और आठ से नौ बजे तक आप जरूर सुनिए लोकल गाने। लोकल गाने के साथ हम आपका सेवा करेंगे। छह का वक्त है, ये है स्टूडियो टाइट सुनने वालों। En van harte goedenavond, lieve luisteraars. U luistert naar Radio SBS.

0: बाहों में चले आओ,
1: बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा,
0: हमसे सनम क्या पर्दा।
1: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनामिका, इस बार रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

फिल्म अनहोनी से सुनने वालों आपने सुना किशोरदा रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। इस बार फिल्म छलिया द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी के आवाज में।

विद डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी के आवाज में सुनने वालों आपने सुना, फिल्म का नाम है छलिया। फिल्म अनहोनी से

0: दिल की तमन्ना
1: तमन्ना
0: द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में, फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

मेरे डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी के वास में फिल्म का नाम है सुनने वालों हंसते इस जख्म। तुम जो मिल गए हो

जी मुकेश की आवाज में आपने सुना, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। हाँ सुनने वाला आप सुन रहे रेडियो SBS फिल्म धमकी। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में

नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के वास में। फिल्म का नाम है ढूंढ। फिल्म डबल क्रॉस से। हाँ सुनने वाला आप सुनिए, फिल्म का नाम है डबल क्रॉस।

रणनाइट के लव इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है बनारसी बाबू। किशोर दा की आवाज में फिल्म एक मुट्ठी आसमान।

शोडा के वास में फिल्म हीरा, किशोर दा रॉक रोल क्वीन आशा भोसले और उषा खन्ना के वास में

नहीं हो तो क्या। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर, फिल्म हिंदुस्तान की कसम। किशोर दा के वास में ही फिल्म का नाम है जैसे को तैसा।

सुनने वालों, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। एंडहोवन शहर से तार किया है श्रीमान हैंक महावीर। और ये गीत मांगा है

0: सीखा नहीं सबक तूने प्यार का,
1: तू जाने क्या मजा इंतजार का।
0: और ये गीत मांगा है एंडहोवन शहर से श्रीमान हैंक महावीर, खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए। प्यार करने के लिए शुक्रिया। फिल्म सपनों का सौदागर, इस फिल्म से निकला है माइटी मुकेश, शादा और साथियों की आवाज में।

से देखो, प्यार से देखे। भाई मुकेश शाडा और साथियों के आवास में फिल्म सपनों का सौदा।

0: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में। जवार भाते फिल्म का नाम है।
1: पागल होंगे
0: कश्मकश फिल्म कश्मकश।

0: वाह,
1: अरे जा,
0: मेरे पीछे है दीवाने, आगे आगे मत बताने मुझे।
2: रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साथ दिया है शत्रुघ्न सिन्हा।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

इंतजार करते हैं। उमर वागिद हुसैन के आवाज में आठ बजकर आठ मिनट गुजर गए। सुनने वालों, ये है स्टूडियो टाइम। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS।

और वागिद हुसैन के वास में एल्बम का बोले कैंडललाइट 7। हाँ सुन वालो, सुनो एक बात बोले, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है।

सुनने वाला ये आखिरी गीत है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। एल्बम का बोले डांसा कीप योर बॉडी मूव।

सुनोला, हमारा मुलाकात होगा इस रेडियो स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS, द वन एंड ओनली। मैं हूँ आपका सेविका नीता। और हाँ, मुस्कुराते रहना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।